सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र। सुबह के 6 बजे हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार मंथन।

अमृतलाल नागर का कथन है, जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती हैं। लीजिए प्रस्तुत है वंदना, भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं हम इस देशगान के साथ।

जिस घर में भक्ति का वास होता है उस घर में दिव्य प्रकाश होता है, रहता है वहां न दुखों का बसेरा, जहां माँ के नाम से होता है सवेरा।

जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं।

0: इसी भक्ति रचना के साथ हमारा आज का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है और आप इस कार्यक्रम को हमारे न्यूज़ ऑन AIR चैनल पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन। आलेख पंडित भगवती धर वाजपेयी का है। वाचक स्वर है माधवी येंडे के।
1: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये प्राथमिक आवश्यकताएं ही जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य अहर्निश प्रयत्न करते देखे जाते हैं, किंतु ये सुविधाएं क्या प्रत्येक को मिल पाती हैं? कुछ भाग्यशाली हैं जिन्हें ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे भी अनेक लोग हैं जिन्हें अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है जो निपट दरिद्र हैं। किसी भी प्रकार की सुख सुविधा उनके लिए दिवा स्वप्न के समान है। प्रश्न उठता है कि क्या ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना ही जीवन का लक्ष्य है? क्या विलास के सारे उपकरण उपलब्ध होने के बाद भी मन में शांति है? जिन्हें दो समय का रूखा सूखा भोजन भी उपलब्ध नहीं हो रहा, उनके लिए रोटी प्राप्त कर लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो तो ये अनुचित नहीं। कहावत ठीक ही है कि भूखे भजन नहीं होता, किंतु जिनके पास साधनों की विपुलता होते हुए भी उन्हें उतने से संतोष नहीं है, वे चिर अतृप्त समाज को कुछ दे सकेंगे, इसमें संदेह ही है। इसका कारण यह है कि वे अपनी निरंतर बढ़ती जाती इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद मनुष्य को कुछ करना ही नहीं चाहिए। उद्यमशीलता तो मनुष्य का गुण और स्वभाव है। वो अपने इस गुण का उपयोग किस दिशा में और किस कार्य के लिए करे, ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। मनुष्य को सुसंस्कार पहले तो घर परिवार से ही प्राप्त होते हैं। बाल्यावस्था में परिवार की पाठशाला में ही बालक चलना, बोलना और बड़ों को प्रणाम करना सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता और बाहर की संगति में वो उठता बैठता है, तो वहाँ के वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता ही है। मित्रों, सहपाठियों के साथ खेलते, पढ़ते, हास परिहास करते समय वो जाने अनजाने में अपनी रुचियों और भविष्य की दिशा का निर्माण करता है। अर्थात आयु का ये कालखंड बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जब जीवन के क्षेत्र में उतर रहा होता है तो अपने स्वयं की चिंता के साथ ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है। सामान्यतः अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु जो अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेष्ट रहते हैं

0: वे दूसरों को भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज का निर्माण उसके श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही होता है। वे अपने वर्तमान के द्वारा भविष्य की नींव तैयार करते हैं। उनके अथक परिश्रम, उनकी कार्यकुशलता और उदारता की वृद्धि का ही तो परिणाम है कि आज हम विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। किंतु चिंता का विषय ये है कि ये सारे साधन सबको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इन अभावग्रस्तों को जब जीवन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो वे भी समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझेंगे। उनके जीवन में ये परिवर्तन भविष्य के लिए शुभ संकेत होगा। असमानता की बड़ी खाई समाज में आंतरिक संघर्ष को ही जन्म देती है, पारस्परिक सौमनस्य को नहीं।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख भगवती धर वाजपेयी का था। वाचक थी माधवी येंडे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर वाणी जयराम और ए हरिहरन का है।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं डिगा सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर वाणी जयराम और ए हरिहरन का था। सुबह के 6:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए कृषि सामे की हल्दी की काश्त। इस विषय पर प्रस्तुत है हमारी आज की कृषि सामे की।
1: किसान बहनों भाइयों, आज बात करते हैं खेती में सबसे अधिक लाभ देने वाली हल्दी की फसल की। हल्दी की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसमें जल निकास अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा इसकी अच्छी पैदावार के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। भूमि को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है, जिससे जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना जरूरी होता है। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके 3 से 4 बार कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करें। इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं कस्तूरी, जो कि कम समय में तैयार हो जाती है। मध्यम समय में तैयार होने वाली प्रजातियां हैं केसरी वर्ग की, जो कि 8 महीने में तैयार होती है। और लंबी अवधि वाली जो किस्में हैं, जो कि 9 महीने में या उससे अधिक में तैयार होती हैं, उसमें दुग्गी राजा, तेकुर पेट, मिदकुर और अरमुर है। हल्दी के लिए बीज की मात्रा प्रकंदों के आकार पर और बोने की विधि पर निर्भर करते हैं। शुद्ध फसल बोए जाने के लिए 20 से 25 क्विंटल और यदि आप शुद्ध फसल ना बोकर मिश्रित फसल बो रहे हैं तो 12 से 15 क्विंटल के प्रकंद की आवश्यकता आपको 1 हेक्टेयर के लिए होगी। प्रकंद 7 से 8 सेंटीमीटर लंबे और कम से कम 2 आंखों वाले होने चाहिए। यदि कंद बड़े हों तो उन्हें काट कर बुआई आप कर सकते हैं। बुआई के पहले प्रकंदों को फफूंदनाशक दवा ट्राइकोडर्मा या बीजामृत, इनमें से किसी भी दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बीज को 30 से 50 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान पर सुखाएं, उसके बाद ही बुआई करें। भूमि में यदि दीमक लगने की समस्या है तो फिप्रोनिल दवा का उपयोग आप करके भूमि को उपचारित कर सकते हैं। बुआई का जो समय है वो अभी चल रहा है, अभी से लेके आप जून के अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे किसान बहन भाई हल्दी की बुआई समतल क्यारियों में करते हैं, परंतु जहां पर पानी रुकने की संभावना हो वहां पर हल्दी की बुआई 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ों पर भी आप कर सकते हैं। समतल खेत में तैयारी के बाद 5 से 7 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं। ध्यान रखें कि क्यारियों में जल का निकास अच्छी तरह से होता हो। इन क्यारियों में प्रकंदों की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें और उन पंक्तियों में प्रकंदों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इन प्रकंदों को 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोना होगा। बुआई के बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए सूखी घास फूस पत्ती की पुआल या भूसे की पलवार की मोटी परत से फसल को ढाक दें। इससे रोपण का जमाव अच्छा होता है और उपज में लगभग ये देखा गया है कि 40% तक की बढ़ोतरी होती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर में 10 से 15 टन गोबर की अच्छी पकी हुई खाद या कंपोस्ट डालें। 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फुर और 80 से 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता हल्दी में होती है। खेत की जुताई से पहले गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसी प्रकार अंतिम जुताई के समय नत्रजन की आधी मात्रा, पोटाश और स्फुर की पूरी पूरी मात्रा, इसको खेत में अच्छी तरह से मिला दें। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 भागों में बांटकर खड़ी फसल में पहली मात्रा बुआई के 40 से 60 दिन के बाद और जो दूसरी मात्रा है उसको 80 से 100 दिन के बाद देना चाहिए। उर्वरक को देकर हल्की मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। हल्दी की खेती के लिए पोटाश का बहुत महत्व है। जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हल्दी की गुणवत्ता और उपज दोनों में कमी मिलेगी। इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, इसमें जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट को 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देने से आपकी उपज बढ़ेगी। यदि आपके खेत की मिट्टी चिकनी, दोमट या मटियार है तो हल्दी की खेती करने में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, किंतु यदि आपकी खेत की भूमि हल्की है तो सिंचाई की आवश्यकता अधिक होगी। बुआई के बाद वर्षा ना होने तक 4 से 5 सिंचाई अवश्य करें। बरसात में यदि आवश्यकता हो तो ये अंतराल आप 20 दिन भी कर सकते हैं। बीज प्रकंदों के जमाव और प्रकंदों की बढ़ोतरी के समय भूमि को नम रखना आवश्यक है। हल्दी में सामान्यतः 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। बुआई के 30 दिन, 60 दिन और 90 दिनों के बाद निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे हल्दी की काश्त विषय पर हमारी आज की कृषि सामिकी। सुबह के 6:50 हुए हैं। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र। लीजिए सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विवरण।

श्रोता, अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे क्रमशः 6:55 से संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, और भोपाल से 7:10 पर हम अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर हम आकाशवाणी जबलपुर से प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे और 8:30 पर भोपाल से सुनिएगा समन्वित कार्यक्रम सॉफ्टवेयर कार्यक्रम। 9 बजे हम आकाशवाणी जबलपुर से लेकर आते हैं लोक रसधार कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे कलाकार होंगे राजा राम विश्वकर्मा और रघुवर दास अहिरवार। ठीक 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं मेहंदी हसन। 10 बजे होती है जिले की चिट्ठी, जिसे हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी भोपाल से, और 10:05 पर सुनते हैं आप वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी। विश्व दर्पण कार्यक्रम हम लेकर आते हैं 10:10 पर, जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

10:20 पर आप सुनते हैं आपका अपना कार्यक्रम सारंगा। यह कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित होगा। ग्यारह बजे से आप होंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के संग और शाम 5 बजे हम हमारी सांध्यकालीन सभा का आगाज करते हैं। यहाँ होंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम और 5:33 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ठीक शाम 6 बजे आप सुनते हैं हिंदी समाचार और इसके बाद आप सुनते हैं अंग्रेजी समाचार। समय होता है 6 बजे और 6:05 यह कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से। 6:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और संस्कृत

0: समाचार होता है 6:20 पर। छः बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में मनीषा जैन को और 6:45 पर सुगम संगीत में हमारे आज की कलाकार होंगी दीप्ति मिश्रा। शाम 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार भी। 7:10 पर भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे हम प्रादेशिक समाचार। कृषि जगत कार्यक्रम होगा 7:21 पर। यहाँ होगी गम्मत और चर्चा होगी सौहार्द सांप्रदायिक एकता की। रात 8 बजे भोपाल से आप सुनेंगे सुर्खियों में, जिन्हें हम रिले करेंगे, और 8:15 पर होगा फिल्म संगीत। समाचार संध्या होता है 8:45 पर और न्यूज एट 9 ठीक 9 बजे। 9:15 पर सुनिए स्पॉटलाइट और 9:30 पर अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती। 10 बजे होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विवरण। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। संस्कृत समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री मोदी डच देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखांच मिलिष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्व दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः, सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिम तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिंबितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। उतोवा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़्रायल् लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन् नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्रिदिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1 धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल् मार्शल् इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भोजशाला को मां वाग देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा है कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां वाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
1: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वागदेवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गांवों में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है।

कल केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mvsp.ujjain.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम 1574.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। समय हो चला है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर का।

माँ नर्मदा की शांत लहरें, भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों और हमारी संस्कारधानी जबलपुर की प्यारी फिजाओं से आप सभी श्रोताओं को स्नेह भरा सुप्रभात। सुबह की ये ताजगी भरी बेला अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा लेकर आई है और कहा भी गया है, हर सुबह एक नया अवसर है बीते हुए कल को पीछे छोड़कर कुछ बेहतरीन करने का। तो आइए मुस्कुराइए सकारात्मक सोच के साथ, अपने दिन की शुरुआत कीजिए सकारात्मक सोच के साथ और जुड़ जाइए हमारे खूबसूरत सफर में, जहां बात होगी संगीत की, प्रेरणा की और अपनेपन की, जिंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों की जो जिंदगी को खास बना देती हैं। और आज इस कार्यक्रम को खास बनाने मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी शालिनी। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

श्रोताओं, सुबह की ताजगी और ये गीत मानो मौसम को और भी खूबसूरत बना देता है। श्रोताओं, ज़िंदगी भी एक ऐसा ही सफ़र है और कोई भी सफ़र यदि हंसते मुस्कुराते हुए तय किया जाए तो हर मंजिल आसान लगने लगती है। और हमने यानी आकाशवाणी ने भी चलते चलते अपना सफ़र 90 वर्ष तक तय कर लिया है। और क्या आप जानते हैं, 90 वर्षों से इस सफ़र में हमारे सबसे ख़ास और सबसे महत्वपूर्ण साथी रहे हैं आप, यानी हमारे श्रोता, जिन्होंने सफ़र में 1936 से लेकर अब तक हमारा साथ दिया। हमारे कई श्रोता जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अब तक और अब से लेकर अपने नन्हे मुन्नों के साथ ये सफ़र तय किया है, या यूं कहिए कि यह सफ़र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक परंपरा की तरह बढ़ता चला गया और आकाशवाणी परिवार के लिए इससे खूबसूरत उपहार और कुछ भी नहीं हो सकता। और हम भी कोई भी अवसर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात होती ही है गीतों के ज़रिए। तो एक और माध्यम, एक और ज़रिया आप तक पहुंचने का आप तक पहुंचा रही हूं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओ, आज है 16 मई और आज है हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार विकी कौशल जी का जन्मदिवस, और हम उन्हें उनके जन्मदिवस पर अनेक बधाइयां देते हैं और सुनते हैं उनकी फिल्म उरी पर फिल्माया ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, गर्मी का मौसम आते ही लोगों को लू लगने की समस्या होने लगती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। और हो भी क्यों ना श्रोताओं, दफ्तर और किसी आवश्यक कार्य के लिए तो हमें अवश्य ही घर के बाहर जाना होता है। और घर के बाहर निकलने से पहले कुछ प्रारंभिक एहतियात जरूर बरतें, जिससे आप लू लगने से बच सकते हैं। श्रोताओं, लू से बचने का सबसे सरल साधन है पानी। जी हाँ, पानी का जितना अधिक सेवन आप करेंगे और जिस भी प्रकार से सेवन करेंगे, वो आपके लिए लाभप्रद है। जैसे छाछ, जलजीरा, नारियल पानी और मौसमी पानी वाले फलों का उपयोग, ये सभी हमें लू लगने से बचा सकते हैं। और श्रोताओं, लू लगने से बचिए और अपना ख्याल रखिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हम ये गीत।

श्रोताओं, आज के दिन और भी कई खास दिवस होते हैं। जैसे आज के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी। हर वर्ष 16 मई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल होती है आज के दिन की, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है मानसून से पहले डेंगू बुखार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उसके लक्षण पहचानना और उसके बचाव कैसे किए जाएं, इसके उपायों को बढ़ावा देना। और भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की पहल सर्वप्रथम की गई थी 2010 में। तो आप भी रुकिए नहीं, डेंगू के विषय में जानकारी लीजिए और बचाव कीजिए।

दोस्तों, वैसे मौसम चाहे जो भी हो, प्रकृति ने हमेशा अपना रूप सिर्फ इसलिए बदला है क्योंकि हमें सुकून मिल सके। प्रकृति हमें हमेशा सुकून देना चाहती है। कुछ पल प्रकृति के बीच बिताइए, कभी कुछ पल पेड़ों के बीच बिताइए, पक्षियों की आवाजें सुनिए, झरनों की कलकल बहती धारा की ध्वनि में कुछ समय बिताइए। समझिए इनकी भाषा, इनकी भाषा से प्रकृति का एक और सुंदर रूप खिलकर सामने आता है और दे जाता है हमें मधुबन का एक प्यारा सा सुकून।

श्रोता, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज यह कार्यक्रम बस यहीं तक। इस कार्यक्रम से दीजिए अपनी रेडियो सखी शालिनी को इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
6: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को

0: साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: dedicated to Goddess Saraswati and barring Muslims from offering Friday prayers. Times of India headlines, disputed Bhojshala site, a temple, declares HC. In its editorial titled When Trump and Xi Met, the Hindustan Times says that their meeting in Beijing failed to deliver any big deal. In April 2025, US President Donald Trump fired the first shots in the trade war against China and the rest of the world. Some countries quickly capitulated, but the Chinese dug in their heels and responded in kind. The paper concludes what the meeting has achieved is that the two most powerful men are talking and open to more talking. And finally, the Hindu reports monsoons to arrive 1 week earlier on the 26th of May in Keralam. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE signed slew of agreements including setting up strategic petroleum and gas reserves in India. Prime Minister Narendra Modi reaches Netherlands on second leg of his five-nation tour. Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज विश्व प्रकाश दिवस है। ये दिन याद किया जाता है लेजर के योगदान में, जिसकी वजह से हम आज चिकित्सा विज्ञान में इतनी तरक्की कर पाए हैं। और मित्रों, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन मनाए जाने चाहिए। एक ऐसा ही दिवस हमने कल मनाया था, विश्व परिवार दिवस। परिवार, परिवार जिसके बगैर समाज नहीं बन सकता। परिवार जिसके बगैर एक व्यक्ति की अहमियत को बताने का सबसे बड़ा जरिया है परिवार। परिवार जिसके माध्यम से समाज विकास के रास्ते खुलते हैं। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस घोषित किया था और 1995 से यह सिलसिला हर साल मनाया जा रहा है। मित्रों, परिवार एक बहुत छोटी सी इकाई होता है, लेकिन ये वो इकाई होती है जिससे समाज बनता है और समाज से राष्ट्र। तो किसी भी राष्ट्र की बुनियाद अगर कही जाए तो वो होती परिवार में। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी दुष्कर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या फिर है, उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति और सभ्यता कितने ही परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने को परिष्कृत कर ले, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आई है।

दोस्तों, परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से ही नहीं बन जाता। इनमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होनी चाहिए, सहयोग के अटूट बंधन होने चाहिए, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे के और इरादे होने चाहिए। हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि इस रिश्ते की गरिमा को हम बनाए रखें। हमारी संस्कृति में, परंपरा में पारिवारिक एकता पर हमेशा से बल दिया जाता रहा है। परिवार एक संसाधन की तरह होता है, परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं और इस संसाधन के कई तत्व होते हैं। एक पहुंचे हुए दार्शनिक दूलन दास ने कहा है, दूलन ये परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरे परे जहते हैं चले सबे बटाऊ लोग। जैनेन्द्र ने इतस्त में कहा है, परिवार मर्यादाओं से बनता है, परस्पर कर्तव्य होते हैं, अनुशासन होता है और उस नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई के हित के आपस में जुटकर चलने की वजह से ही हर सदस्य अपना आत्मदान करता है और जिसकी वजह से इज्जत खानदान की होती है और इसी खानदान में हम आगे अपने भविष्य को देखते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, परिवार वो कड़ी है जिसकी वजह से ही हर धर्म, जातियों और संप्रदायों में लोग आपस में जुड़ पाते हैं। आज के दौर में भले ही परिवार में ये देखा जाने लगा है कि छोटा परिवार लोग अपनाने लगे हों, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार वो आदर्श है जिसके छांव तले प्रत्येक व्यक्ति रहना चाहता है। संयुक्त परिवार में दो या तीन पीढ़ियां और कभी कभी इससे भी अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक ही घर में अनुशासन के साथ एक ही रसोई घर में भोजन और जीवन की ज़रूरी चीज़ों का उपभोग करते हैं, एक ही परिवार के धार्मिक कृत्यों और संस्कारों में भाग लेते हैं। ये वो परिवार होते हैं जिसमें आदर्शों को लेकर, संभावनाओं को लेकर और व्यक्तित्व विकास की बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से इस परिवार को प्राथमिकता दी जाती रही है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, जब आज का ये कठिन समय जिसमें मानसिक तनाव, अकेलापन और टूटते मानवीय रिश्तों की आहटें हमें सुनाई दे रही है, ऐसे भीषण दौर में परिवार न केवल रहने की जगह है बल्कि हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और संस्कार और संवेदनाओं को समेटने वाली मजबूत छत बनकर भी हमारे सामने आता है। आज जब जीवन की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि इस चक्कर में हम अपने आप को भी झोंक दे रहे हैं, ऐसे दौर में जहां आर्थिक संकट भी गहरा रहा हो, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हम खोखले होते जा रहे हों, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते जा रहे हों, तो ये संकट केवल एक व्यक्ति पर नहीं टूटता। अकेलेपन से उपजा अवसाद पूरे परिवार को भी ख़त्म कर सकता है। ऐसे दौर में जब हम बहुत छोटे छोटे से फ्लैटों में, छोटे छोटे से पिंजरों में खुद को कैद करने लगे हों, हर तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी भीतर से कंगाल हो रहे हों, तब परिवार की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वृद्ध माता पिता उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, बच्चों संस्कारों से दूर हो रहे हैं और पति पत्नी के बीच संबंधों की ऊष्मा ऊर्जा कम होती जा रही है। ऐसे दौर में परिवार के बीच मानसिक रोग, तनाव, असुरक्षा और आत्महत्याओं की घटनाओं की बाढ़ आ रही हो, ऐसे दौर में परिवार की नामक एक संस्था कि फिर से हमें उस संस्था की ओर लौटने की दरकार है।

दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को केवल उपभोग और सुविधा का केंद्र न बनाकर उसे आत्म जागरण का केंद्र भी बनाया जा सकता है। अहिंसा की प्रयोगशाला बनाई जा सकता है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है, कठोर शब्दों से बचना है, अपमान न करना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, क्रोध पर संयम रखना है और सबसे बड़ी बात संवाद बनाए रखना है और क्षमा का अभ्यास करना भी अहिंसा ही है। यदि परिवार के भीतर भाषा की कटुता, अपमान और असहिष्णुता होगी तो समाज में शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? परिवार वो पहला स्थान होना चाहिए जहाँ पर बच्चा सहिष्णुता और करुणा का पाठ पढ़े, सीखे और जीवन में उतारे।

0: आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप 9 बजे से 9:15 के बीच भी सुन सकते हैं। अभी 8:58 होने जा रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद पीएम स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भूशाला को मां वाग्देवी की आराधना स्थली माना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ और 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। और आईपीएल में कल नौ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक रसधार। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राजा राम विश्वकर्मा और रघुवर दास अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत। तो आइए कार्यक्रम लोक रसधार में आपको सबसे पहले सुनवाते हैं राजा राम विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक रसधार कार्यक्रम में अभी आपने सुने राजा राम विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं रघुवर दास अहिरवार के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक रसथार और हम आपको सुनवा रहे हैं रघुवर दास अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आपने सुने रघुवर दास अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत। श्रोताओं सुन रहे थे लोक रसधार। लोक रसधार कार्यक्रम में आज आपने सुने राजा राम विश्वकर्मा और रघुवर दास अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के संग। सुबह के 9:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मेहंदी हसन, तो आइए आपको सुनवाते हैं मेहंदी हसन के गाए चंद गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेहदी हसन को। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के संग। सुबह के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी। हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे, कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी है, 10 बजने जा रहे हैं। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरे को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबित 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले के कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस से यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दाऊदी

बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है जिनका चयन भारत के अंडर 18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंड को और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के संग। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी।

श्रोता वंदे मातरम गीत नहीं, यह एक राष्ट्रीय भावना है, इसलिए इसे जब भी किसी कार्यक्रम, मंच या प्रसारण में प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ मर्यादाओं और सम्मान का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, वंदे मातरम गाते समय वातावरण गरिमामय होना चाहिए। गीत के शब्दों या भावों में अनावश्यक बदलाव नहीं किए जाने चाहिए ताकि इसकी मूल आत्मा हमेशा बनी रहे।

श्रोताओं, इन 150 वर्षों में वंदे मातरम ने कई रूप देखे। कभी स्वतंत्रता सेनानियों के नारों में, कभी विद्यालय की प्रार्थनाओं में, कभी संगीत की मधुर धुनों में और कभी देशभक्ति से भरे मंचों पर। रेडियो, विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय आयोजनों में इसे पूरे सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कई जगहों पर श्रोता इसे खड़े होकर भी सम्मान प्रकट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देशभक्ति की भावना के समय स्वाभाविक रूप से मन श्रद्धा से भर उठता है। और शायद यही कारण है कि आज 150 वर्षों के बाद भी वंदे मातरम सुनते ही दिल में वही गर्व, वही सम्मान और वही देश प्रेम हम सबके मन में जाग उठता है।

तो श्रोताओं, गर्व से कहिए वंदे मातरम। तो ये था आज का हमारा वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। विश्व दर्पण हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया।
2: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग का समझौता किया है। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इस समझौते से भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी की साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री टॉम बेंडरसन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा महाराज और रानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था

0: कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ

0: से बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकी जोनास गहर स्टोरी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो सही काम करने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान के रवैये की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान समझौतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा व्यवहार करता है जैसे बातचीत कभी हुई ही ना हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं। चीन से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हो गया है।
1: And that's General Electric also, the engines, approximately 450 engines. We had an amazing time. It's a very historic.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापार करने में आसानी और देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह से फेई से होगा। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामा को 21-12, 21-13 से हराया। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 अकाने यामागुची से हार गईं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विदितसन से हार गए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में $5 अरब के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडारण सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

0: कंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के संग। प्रस्तुत है सारंगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपकी रेडियो सखी शालिनी। श्रोताओं, आप सभी के पत्र और आपके खत मुझ तक पहुँच चुके हैं और हम सब तक आपका इतना सारा प्रेम आपके पत्रों के दौरान पहुंचता है हम तक, हमें इसकी बेहद खुशी है। और पहला पत्र जो मैं पढ़ने जा रही हूं, जो हमें मिला है बेरड़ी से, राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज सव्वासेरे का। इंदौर से हमें पत्र लिख भेजा है हर्षिता, विराट, श्रीम, उदय, सुमन, अजय, अरुण, इति, आदित्य, आरती, उत्तरा, मनु, अदिति, नयन, अंकिता, पवन, शालिनी, अनुराग, शिवांग ने। ये सुनना चाहते हैं श्रेया घोषाल और मीनल का गाया ये गीत, जिसे गाया है, जिसे हमने लिया है रांझना फिल्म से। इशाद कामिल की शब्द रचना है, AR रहमान का संगीत है।

सरगुजा मेन पार्ट से हमें पत्र लिख भेजा है सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा और आदिबा ने। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सफदुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम ने। कृति, निखिल, प्रतीक, ऐश्वर्या, किरण, राकेश, अरविंद, नीलम, संजू, अर्जित, आर्यन और आद्विक ने। जेल रोड मथुरा से वसीम बेलदार, अकरम उल्लाह, असम बेलदार ने हमें पत्र लिखा है साजन फिल्म के किसी भी गीत को सुनने के लिए। तो आइए हम इन्हें सुनवाते हैं अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में। समीर का गीत है और नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म है साजन।

कार्यक्रम सारंगा के लिए हमें एक और पत्र लिख भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमन, अनिल शर्मा, कालका बाजार से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल बजाज ने, यहीं से हर्षी अंकित, निशी, रवीना छोटू, प्रीतांश, अन्वित, रेखा, संतोष, गौरी, पूर्वी, विजया, संदीप, सुषमा, राधा, सुरेश, आकांक्षा, संजय, अर्णव और इनके समस्त मित्रगण ये सुनना चाहते हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है रूप कुमार राठौर ने। जयदीप का गीत है और संगीत है सलीम सुलेमान का।

श्रोताओं, गाइड फिल्म के गीतों गीत को सुनने के लिए हमें कई पत्र मिले हैं। ये पत्र हमें मिला है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, चेतन, दीक्षा और परी मूरत का। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी का। पोलीपाथर लालकुआ जबलपुर से दिलीप रजक, सुमन, सागर और बेबी परी रजक का भी हमें पत्र मिला है। ये सुनना चाहते हैं गाइड फिल्म का कोई भी गीत, तो आइए हम इन्हें सुनवाते हैं गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र का गीत है और संगीत है एस जी बर्मन का।

सिंहपुर बड़ा से राजेश ने माँ, संगीता, भावना और प्राची ने माँ, शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। ये सुनना चाहते हैं सिंघम फिल्म के इस गीत को, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अजय देवगन ने। स्वानंद किरकिरे का गीत है और संगीत है अजय अतुल का।

कार्यक्रम सारंगा में अगला खत हमें लिख भेजा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मुख्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। कुंदनगर खरगोन से सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवड़े ने। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। ये सुनना चाहते हैं यश बॉस फिल्म से इस गीत को, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। जावेद का गीत है और संगीत है जतिन ललित का।

मैंने प्यार किया इस फिल्म के गीत को सुनने के लिए हमें अपनी फरमाइश लिख भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया आसमा, सालिया शोएब खान, साइमा खान, पोत्रा मुज्तबा खान, आफिया खान और राउफ भाई शाहिद भाई ने। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। गोरखपुर जबलपुर से प्रेमनाथ मिश्रा, कल्याणी मिश्रा, ऋचा शलभ, रक्षा वैष्णवी और रुद्रांश मिश्रा, आशीष चौबे, ऋचा चौबे, ज्ञानवी और पी एन मिश्रा और योगेश मेहता जी ने भी यहीं से हमें पत्र लिखा है और ये सुनना चाहते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत। तो आइए इन्हें सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। अर्शद भोपाली की रचना और राम लक्ष्मण का संगीत है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगाब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जहां आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और यूएनए पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश। ये दिन प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। देवास के टोंकला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए

का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हम बात करेंगे जिंदगी की किताब के उन पन्नों की जो भरे हुए हैं जज्बातों के रंग से, जिनमें शामिल होता है प्यार का रंग, मस्ती का रंग, खुशी का रंग, नाराजगी, दुख, दर्द, दूरी और दोस्ती का रंग भी। और इन रंगों पर कहीं गाढ़ी स्याही ढुलक जाती है तो कभी रोशनी का रंग बिखरता है। मगर हम नहीं रुकते और ना ही जिंदगी रुकती है। अपनी रफ्तार से जीने के लिए चलती चली जाती है और हम भी चलते रहते हैं उसी के साथ। तो आज इन रंगों के एहसास को आप बांटेंगे, बयां करेंगे मेरे साथ। मैं हूँ आकांक्षा, आपके साथ। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। तो श्रोताओं, देर किस बात की है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और साझा कीजिए इन एहसासों से जुड़े कुछ किस्सों को, बातों को हमारे साथ। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता कॉलर से। हेलो जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: जी जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारी।
1: जी तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारी जिंदगी की जो किताब होती है वो कई तरह के रंगों से भरी होती है। उसके हर पन्ने पे एक अलग ही रंग होता है, जिसमें प्यार का रंग होता है, मस्ती का रंग होता है, खुशी, दुख, दर्द, जुनून, दोस्ती का रंग भी उसमें शामिल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप अपने जज्बात के इनमें से किसी भी रंग के एक एहसास के साथ जुड़ा अगर कोई आपका किस्सा है तो वो हमसे साझा कीजिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
2: गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। दीदी मनोज नामदेव।
1: मनोज जी नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: बस दीदी बढ़िया है, आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते रहते हैं। बिल्कुल दीदी, और कहें कि आकाशवाणी भोपाल से तो हमारे श्रोता अपार प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बताया अब कैसे बता दूं मैं आपको।
1: वो हम आपके जज्बात समझते हैं, इसीलिए तो आज का विषय यही है कि अपने जज्बात के रंग का कोई उससे जुड़ा हुआ किस्सा या उससे जुड़ी हुई कोई बात हमसे शेयर कीजिए।
2: बिल्कुल दीदी, आपको मैं छोटा सा वाक्य बता दूं
1: जी।
2: कि दीदी जब मैं कहें कि छोटा था
1: जी,
2: तो इतना समझदार नहीं था, लेकिन मैं अपने जो पापा जी के साथ बैठा करता था। मेरे पापा जी क्या करते हैं, सिलाई वाली जो मशीन चलाते हैं दीदी
1: जी,
2: तो आपका जो रेडियो स्टेशन है वो सुनते रहते थे। तो पहले भोपाल भी आता था और हमारे पास में शिवपुरी है वो भी आता था, और हमारे पास में झांसी भी है वो भी सुनते थे। तो मैं सुनता रहा, बहुत दिन सुनता रहा, पर मेरे मन में एक कहें कि एक जिज्ञासा जगी कि इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें बढ़िया तो समय समय पर गीत आते हैं और समय समय पर इसमें कहें कि समाचार भी आते हैं, और आज दिख रहे हैं तो आज इसमें मैच भी आ रहा है
1: जी।
2: तो मैं सोचता रहा, अब मेरे मन में एक जुनून सा पैदा उस दिन से ऐसा हुआ कि मैंने अब मन में ठान ली, या आपका क्या कहें कि कसम खा ली, कुछ भी मान लो, तो उस दिन से जुनून ऐसा पैदा हो गया, ऐसा जुनून सवार हो गया मेरे ऊपर कि जब तक मैं सुबह से शाम तक रेडियो अगर मैं अपने शॉप पर हूँ तो

0: सुनता ही हूँ, अगर शॉप पर भी नहीं हूँ तो कहीं भी हूँ, रेडियो बिना मेरे को चैन नहीं पड़ता।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बताएं कि ये जो जुनून वाला एहसास है, ये एक ख्वाहिश होती है कि आपने ये बना लिया है कि हाँ मुझे रेडियो सुनना है, और ये ख्वाहिश, ये जुनून बारिश की उन बूंदों की तरह होती है मनोज जी, कि जिसे पाने की चाहत में हम तो भीग ही जाते हैं और वो जो प्यास है वो बरकरार रहती है, या ये कहें कि बढ़ जाती है। अब आपको भी वो प्यास रहती होगी कि अब हमें सुनना है कि अब हमारे रेडियो में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है।
0: बिल्कुल दीदी, और बिल्कुल दीदी, और बताना चाहती कि अगर मैं रेडियो से नहीं जुड़ता तो काश अभी जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता। आगे से ज्यादा तो भूमिका रेडियो की है कि आज मैं यहाँ तक हूँ, कहीं की इतने श्रोता है मेरे, इतने श्रोता है कि अगर मैं चाहकर भी श्रोताओं से अगर मिलता या उनसे बात करता तो मेरा कहीं की जिंदगी निकल जाती, लेकिन श्रोताओं से कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मेरे जिंदगी में रेडियो का इतना महत्व है कि अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
1: वो हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है मनोज जी, आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है रेडियो से, और हम चाहते हैं कि आपका ये प्रेम हमेशा बरकरार रहे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
0: अगर आपका आकाशवाणी भोपाल की जितनी भी अनाउंसर हैं, अगर सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को, तो आखिरी सांस तक रेडियो में छोड़ूंगा ही नहीं।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे भी नहीं कि आप छोड़ें हमारा साथ, लेकिन आशीर्वाद हमारा नहीं ईश्वर का रहता है, हमारा तो साथ है आपके साथ,
0: बिल्कुल
1: ना, जो हमेशा बना रहेगा। मनोज जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, इतनी अच्छी बात हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी, आपको भी, सभी टीम को
1: जी।

0: इसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। एक बार समीप के नगर में बड़ा सा मेला लगा, वो दोनों भी मेला घूमने गए। विभिन्न नटी नर्तक एवं चारणों से पूरा मेला सुशोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
1: मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है, उठो मित्र, उठो।
2: पानी, पानी, पानी।
1: ये लो पानी, लो लो। आराम से बैठो, कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?
2: हाँ मित्र, स्वस्थ तो हूँ, पर चैन नहीं है।
1: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
2: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय अवश्य करूंगा।
2: नहीं मित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
1: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
2: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी।
1: ओ,
2: मैं उस राजकन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
1: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
2: क्या क्या कह रहे हो रत्कार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहां राजकन्या से हमारा मिलन कैसे संभव? कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
1: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
3: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रथकार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
4: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
3: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
5: कौन है वहां झरोके पर?
2: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर

0: मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूं। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
1: भगवान भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूँ? मुझे आपके दर्शन हुए, परंतु परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, अपवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
0: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहां पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहां चला आया।
1: यदि यही बात है तो भगवान, चलिए हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
0: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
1: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
2: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया, और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग किया। प्रातः काल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया। अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रहते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
3: अरे शैला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
4: अरे अरे, तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था, अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
3: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतरापुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
4: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए। वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
3: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं। चलो, अब विलंब करना व्यर्थ है।
4: महारानी की जय हो।
5: शैला, कहो क्या संदेश लाई हो?
4: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
5: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
3: बात यह है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है, आपकी आज्ञा क्या है?
5: ये क्या कह रही हो, ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
4: महारानी, हो सकता है कि ये सब सत्य न हो।
5: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है।
3: महारानी,
5: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
4: महारानी,
6: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी, हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अब क्या होगा, किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया, क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
1: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
5: पापिन, कुल कलंकनी, इस प्रकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
6: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
5: बोल, सत्य बोल।
1: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
6: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है? स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी? हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
1: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था। मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं, तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
5: महाराज, हम धन्य हो गए। आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
6: आप सत्य कहती हैं महारानी। आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: महारानी, रात का पहला पहर तो बीतने को आया और अभी तक कोई नहीं आया है।
1: धैर्य रखे महाराज, वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
0: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गया। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।

राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्योदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री,

0: सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है। परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?
1: भगवान, आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं। ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण

0: मैं शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
1: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है, तुम निश्चिंत रहो। मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
0: हाँ भगवान, हाँ, आप नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा। कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
1: सोचता हूँ दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध करुण पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे। और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या। प्रिय, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातः काल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें। मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
0: प्रभु, प्रभु,
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
3: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
4: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूं। उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए।
3: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
4: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
3: आप सत्य कहते हैं गरुड़देव। आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
4: जी।
3: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
2: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह, आनंद ही आनंद है। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका हूं। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जमाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
0: क्या? अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे।

0: प्रभु, आइए प्रभु पधारिए।
1: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
2: और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

आगे करकट और दमनक क्या करेंगे ये आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच अबू धाबी में हुए। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी माँ बागदेवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

0: हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। मैं पुनः दोहराती हूँ कि हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम मात्र से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से, उसके पहनावे से और उसकी भाषा से होती है। जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ टूरिज्म को देखते हैं, तो उनके बिना बताए ही उनके पहनावे से और उनकी भाषा शैली से उनके निवास स्थान का अंदाजा लगा लेते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व हुआ है। हाँ, मौखिक भाषा तक पहुँचने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है। हमारी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक है, एकता का सूत्र है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक दर्जे पर आई और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। यह भारतीय संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। श्रोताओं, भारत की भाषाई विविधता हमारे देश सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। हमारी भारतीय भाषाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध भी है। आइए अपनी भाषा के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, संवैधानिक स्थिति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया। इनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत एवं अन्य भाषाएं शामिल हैं। भाषाई परिवार। भारत की भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे गद्य भाषा एवं पद्य भाषा। हमारी भाषा पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखित हैं। ये पुस्तकें NCERT, ICSE या राज्य बोर्ड के तहत तैयार की जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाना है और साथ ही व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने की कला सिखाती है। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय भाषा की पुस्तक योजना के बारे में। तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री और पुस्तकों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि छात्रों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे विषय की समझ बेहतर हो। अनुवाद और मूल लेखन इसके तहत अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय लेखकों को मूल सामग्री लिखने को प्रेरित किया जाता है। उच्च शिक्षा पर ध्यान। यह योजना विशेष रूप से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और विज्ञान जैसे तकनीकों पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं पर उपलब्ध कराने पर जोर देती है। डिजिटल उपलब्धता। पुस्तकों को न केवल प्रिंट रूप में बल्कि ई-बुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि दूर दराज के छात्र भी इसका लाभ उठा सके और अपनी भाषा का भी महत्व समझे। अपनी भाषा अपनी पहचान, यही है भारत की शान। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, उसके पहले सुनते हैं यह गीत, जिसे आवाज दी है सुनिधि चौहान और करीना कपूर ने।
1: A daughter is a daughter,

0: रे।
1: तो इस गीत के बाद मैं स्मृति पुनः प्रस्तुत हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में। श्रोताओं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब से आज तक आकाशवाणी जन जन तक देश विदेश की खबरों, संगीत, आवश्यक जानकारी व मनोरंजन करती आई है। आज भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो एक ऐसी ही श्रोता हमारे बीच हैं, पुष्पा सिंह जी, जो रीवा जिले के माँ गायत्री शक्तिपीठ की ट्रस्टी हैं, जिन्हें सुनते हैं एक भेंट वार्ता के माध्यम से। तो आइए सुने यह भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पा सिंह जी, जो कि रेडियो की बहुत अच्छी श्रोता हैं और आज भी रेडियो से इनका बहुत ही गहरा लगाव है। पुष्पा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते बहन स्मृति जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो के लिए मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है। और रेडियो, रेडियो का तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेडियो की बात ही अलग थी। हम तो बचपन से रेडियो के इतने शौकीन थे कि कोई भी काम करते थे तो रेडियो ही चला के काम करते थे और काम का पता ही नहीं चलता था कि क्या हमारा काम पूरा हो गया। और हम बड़े प्रेम से सारे काम हमारे होते थे और खासकर महिलाओं के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए जो आते थे। और मैं गीतों की बहुत शौकीन थी, चाहे वो फिल्मी हो चाहे भजन हो, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनती थी और मैं बहुत शौक थी। हालांकि मुझे विविध भारती के तो सारे ही प्रोग्राम बहुत पसंद थे, चाहे बिना का गीत माला हो, चाहे हवा महल हो, हवा महल की कहानियाँ आज भी हम सुनते हैं, कभी भी मन हो जाता है। मैं टीवी के बजाय रेडियो को देख सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे काम भी होते हैं। टीवी तो हमको देखना पड़ता बैठ के, लेकिन रेडियो में हम काम भी करते रहते हैं और हम सब सुनते भी रहते हैं।
0: तो यानी कि इसमें कोई समय की बर्बादी नहीं होती है।
2: समय की हमारी बर्बादी नहीं होती है बहन, और जो है हमारी काम भी अच्छे से होते रहते हैं। और कई बार हवा महल का जो प्रोग्राम आता है, पुरानी जो छोटी छोटी सी कहानी, अपने पति पत्नी की आपसी वार्तालाप, इतना मेरे को पसंद आता है और हम लोग उसके लिए बड़े बेकरार रहते थे। और बिना का गीत माला, कौन सा गाना टॉप पे आएगा, ये कौन सा गाना, ये बड़ी उत्सुकता हमारे मन में रहती थी। और फौजियों के लिए, फौजियों के लिए कार्यक्रम में वो भी बहुत पसंद था। मैं रेडियो की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कितनी तारीफ करूँ। हर प्रोग्राम ही उसके सब बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे समाचार हो, चाहे बिना का गीत माला हो, और चाहे हवा महल हो, या छोटी छोटी कहानियाँ हो, या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाना भी बताते हैं, तो बहुत पसंद आते हैं। कई बार हम लोग बहुत ट्राई करते थे कि आज ये आया है, बना के देखते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में ये तो होता नहीं, गूगल तो होता नहीं था, तो हम रेडियो पर जो आती थी व्यंजन विधि, उसको

0: अवसर आने का प्रयास करते थे।
1: जी जी,
0: तो बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत ही मतलब कहाँ तक मैं उसकी तारीफ करूँ। आज भी हम उसी तरह से रेडियो के प्रशंसक हैं, चाहे कितना ही भी आ गया है, जब यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई है,
1: आया है
0: लेकिन उसका मुकाबला आज भी नहीं है। आपसी बहनों की जो चर्चा होती है, जब दो बहनें आपस में बात करती हैं, तो लगता है कितनी अपनत्व है कितना। और फरमाइशी प्रोग्राम में गांव-गांव से टीवी में कहाँ आता है, गांव से आज भी हम जब सुनते हैं ना फरमाइशी प्रोग्राम, तो जो बताते हैं ना, हम तो किसानी का काम करते हैं, हम तो सिलाई का काम करते हैं, हम तो खेत में बैठ कर रेडियो सुन रहे हैं, तो इतना अपनत्व लगता है कि हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम जो है उसमें जो आता है, इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है कोई ये सब अपने जुड़े हुए हैं, सब हमारे ही हैं, कहाँ कहाँ से कितना जाते हैं, अपने अपने पत्र भेजते हैं, कितनी खुशी होती है जब उनके पत्र मतलब पढ़ते हैं,
1: पढ़े जाते हैं हमारे नाम पढ़े जाते हैं,
0: तो बहुत खुशी होती है। मैं भी पहले बहुत पत्र लिखती थी, एक आध बार मेरा भी नंबर आया है, और मैं भी पहले रेडियो में प्रोग्राम देती थी, तो गीत में भी मैंने प्रोग्राम दिया है अपना, और चर्चा में वैदिक संस्कृति के ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कि भारतीय नारी जब और अब, इसमें हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो रेडियो का तो कोई वो ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तोड़ नहीं है, चाहे कितना भी आधुनिकता आ जाए और कितना ही हो जाए, लेकिन रेडियो हमारे लिए आज भी उतना ही आवश्यक है, और बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे किसी काम पर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता,
1: बिल्कुल
0: नहीं पड़ता है, चाहे हमारे काम भी चलते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं।
1: बिल्कुल पुष्पा जी, आपने अच्छे से जानकारी दी, आप वाकई में रेडियो की एक अच्छी श्रोता हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज आपसे हमारी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
0: मेरी तरफ से भी बहन स्मृति बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके उत्सुकता को व्यक्त कर सकूं और आपके लिए कुछ थोड़ा सा अपना समय दे सकूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो बहनों, अभी हमने सुनी है भेंटवार्ता, जिसमें बात कर रही थी पुष्पा सिंह जी। श्रोताओं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है भारतीय भाषा के बारे में, तो हमारी भाषा का कोई तोड़ तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी हर प्रांत की, हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अलग पहचान होती है, एक रस होता है, और साथ ही भाषाओं में और अधिक रस कब पड़ता है, जब कोई लेखक या शायर अपने शब्दों में या भाषा को मिश्रित करता है, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर भाषा का आनंद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शायरा, सकीला बानो भोपाली के बारे में, जो शायरा होने के साथ साथ कवियत्री और मंच संचालिका भी थी। उनका जन्म 1940 में भोपाल में हुआ था। वो खास तौर पर

अंदाती थी। सकीला बानो भोपाली ने देश विदेश के कई मुशायरों में भाग लिया और उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मुशायरों की मलिका भी कहा जाता है। उनकी शायरी में प्यार, समाज, महिलाओं की भावनाएं, जिंदगी के अनुभव झलकते थे। वे कई फिल्मों एवं रेडियो कार्यक्रमों से भी जुड़ी रहीं। आइए सकीला बानो के बारे में कुछ और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। सकीला बानो को कम उम्र में ही संगीत और शायरी में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कव्वाली को केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश का माध्यम भी बनाया। उनकी गायकी में उर्दू शायरी, सूफी अंदाज और हल्का भी शामिल होता था। वो अपनी तेज आवाज, आत्मविश्वास और मंच संचालन के लिए मशहूर थी। चूंकि उस दौर में महिला का मंच तक पहुंच पाना एवरेस्ट चोटी तक पहुंचने से कम नहीं था, इसलिए उनके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आईं। लेकिन सकीला बानो हार न मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लोगों का मन जीता और महिला कलाकारों के लिए नई राह बनाई, और इस तरह लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ने के बाद सन 2002 में सकीला बानो की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी लोग सकीला बानो को बड़े सम्मान से याद करते हैं। तो आइए हम भी उनके सम्मान में सुनते हैं ये कव्वाली।

बहनों, गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धूप और चुभती गर्मी ने इंसान का हाल बेहाल किया है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में हमें खुद की सुरक्षा का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को सफेद कपड़े से ढक कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें।

और हाँ, धूप से लौटने पर एक सांस में ज्यादा पानी ना पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। साथ ही मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज करें और ठंडक वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे दही, छाछ, खीरा, ककड़ी, नींबू, पुदीना, खिचड़ी या मूंग दाल, बेल का शरबत आदि। इसी कड़ी में हम आज जानेंगे मुनगे की कढ़ी बनाने की विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कढ़ी को बनाने की सामग्री। सामग्री है 1 कप खट्टा दही, 2-3 चम्मच बेसन, 2 साबुत लाल मिर्च, राई छोटा चम्मच, मुनगा 8-10, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी, करी पत्ता, लहसुन व नमक। अब आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मुनगे को छीलकर छोटे छोटे लगभग 2-2 इंच के टुकड़े कर लें और तेल में फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में दही, बेसन व पानी का मिश्रण तैयार करें। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करें और राई, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, लहसुन तथा हल्दी का तड़का लगाएं। तड़का ठीक से सुनहरा हो जाने पर दही बेसन के मिश्रण को भी कढ़ाई में डालें और अंदाजे कि मिश्रण न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला, और बड़े चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहें। कढ़ी में उबाल आने पर मुनगे के टुकड़े को डाल दें, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डालें और ठीक से पकाएं। अब इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यह दोनों में ही लाजवाब लगती है और सेहत से भरपूर होती है। खास करके गर्म के मौसम में मुनगे की कढ़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहनों, अंत में सुने एक और गीत, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

बहनों, अभी हमने सुना ये गीत जिसे आवाज दी थी शंकर महादेवन ने, और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। नमस्कार।

श्रोता बहनें भी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

0: मणिमाला सिंह और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है सुगम संगीत। कलाकार हैं मुकुल सोनी।

मुकुल सोनी के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फिल्म संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होंगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।

0: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है, जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप T20 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CBSE ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग

0: में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज

0: 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा

0: उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
0: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ

0: के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश का पहला गीत आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में। हसन कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म है एतबार।

एतबार फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसकी फरमाइश हमें सीतामणि बिहार से भेजी थी अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, आरिज, अरहान, हमजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की भी यही पसंद थी। इसी गीत को सुनना चाहा था बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। इंदिवर की रचना है, राजेश रोशन का संगीत और फिल्म है आखिर क्यों। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, करिश्मा, प्रेमबाई और साहू परिवार के सभी सदस्यों ने राजेंद्र नगर गंज बासौदा विदिशा से ये पत्र भेजा है। खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मनीष कुमार पाराशर, परी, आकांक्षा, राधिका, नीना, खुशी, प्रेम नारायण, हीराबाई, हेमंत, अभिषेक, मोहित, मयंक, अनीता, सविता, पूनम, रविशंकर, निरंजन, राकेश, मुकेश, तरुण, प्रवेश, नमन, पवित्र दुबे और उनके सभी साथी।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म राही के लिए इस गीत को लिखा है नक्शलायलपुरी ने। संगीत जगजीत सिंह का है और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला खां, नसीम बेगम, आयशा खां, हादिया, अस्मा, सालेहा, शोएब और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेगी से भागवत वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और राजावत परिवार के सभी सदस्य। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है एक नया रिश्ता। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। फरमाइशी पत्र प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम से आया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की फरमाइश है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता ने इस गीत को सुनना चाहा है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की भी यही पसंद है।

एक नया रिश्ता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 का समय रहेगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का तीसरा भाग। इस विशेष भेंटवार्ता में आप सुनेंगे यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से ली गई भेंटवार्ता।

7:21 का समय रहेगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 से चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 और 15 सेकेंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब मीडियम वेव पर यह प्रसारण यहीं विराम पाता है। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: चाहेगी
2: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। शकुंतला रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
2: धत।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।

0: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
1: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है री।
0: परिहास ना कर।
1: अच्छा नहीं करती, बता।
0: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी बड़ी हो गई। नहीं,
1: तेरी तरह।
0: फिर परिहास।
1: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं,
0: हाँ बता।
1: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
0: तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
2: अच्छा तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
3: ये भौरा कहाँ से आ गया? अरे भगाओ ना इसे। तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़। भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
2: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
3: अरे बचाओ, बचाओ ना।
4: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
2: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना।
2: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य।
2: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी। बैठे ना आप लोग भी।
0: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जा।
0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
2: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें? मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूं। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंपकर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
2: बहुत मीठा है इसका गला।
1: करती रहती है सबका भला।
2: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
2: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य। वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
5: फिर
2: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
0: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
2: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
5: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
5: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
5: ये लीजिए
1: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
2: आपके पास ये अंगूठी?
5: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
5: मैं आभारी हूँ।
6: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान सावधान।
5: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
2: हे भगवान, अब क्या होगा।

0: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
1: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला। हाँ हाँ चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राज कार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है, उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
6: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
6: ठीक है,
7: महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
8: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
8: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार? उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी? कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं।

0: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
2: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
0: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
2: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
0: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
2: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
0: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
2: वो कैसे?
0: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
2: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
0: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
2: क्या?
0: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
2: फिर
0: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
2: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
0: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
2: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
2: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
2: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
0: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो मंचीय प्रस्तुति?
2: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया।
1: अच्छा,
2: मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था।
1: हाँ, हाँ।
2: तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
1: जी,
2: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
1: जी, जी, जी।
2: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ,
2: हाँ। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी,
1: जी।
2: तो षणमुखानंद में शो था।
1: हाँ।
2: और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
1: हाँ,
2: नाम नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो
1: जी।
2: पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है तो,
1: हाँ,
2: खर्च के जो सुर होते हैं,
1: हाँ,
2: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूँ क्या स्केल?
1: हाँ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
2: ये दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें
2: बहुत।
1: से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों सर,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है।
1: हाँ
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है
1: नहीं
0: या
1: नहीं
0: लता दीदी,
1: वो तो नहीं
0: ऐसा
1: है,
0: कभी हुआ
1: वो
0: नहीं?
1: दुर्भाग्य रहा मेरा नहीं
0: जी
1: हुआ।
0: जी जी
1: लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के
0: हाँ,
1: लिए। हाँ,
0: अरे वाह, ये कौन सी
1: मराठी
0: फिल्म?
1: फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी
1: और फिल्म का नाम था बायानो नवरे संभाला।
0: ओ
1: उसमें
0: हाँ
1: डांस की जुगलबंदी थी,
0: हाँ
1: जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो
0: अच्छा
1: उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के गाए, एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने
0: अच्छा
1: गाया।
0: अच्छा
1: मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई,
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: मेरा ट्रैक
1: तो मैं
0: रिकॉर्डिंग शुरू हो
1: बहुत
0: चुका
1: ये
0: था।
1: दबती थी। हाँ,
0: जी
1: ट्रैक
0: जी
1: रिकॉर्डिंग, तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था
0: जी
1: शशांक लालचंद
0: जी
1: तारदेव में, तो वहाँ पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ
0: हाँ
1: हमारा, तो मेरा मैंने पार्ट मैंने अलग गाया,
0: अच्छा
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में है अपने हिसाब से, तो
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का, और
0: अच्छा
1: कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आप किस हुकुम
0: हाँ।
1: आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ
0: जी
1: माई
0: जी
1: गॉड,
0: जी
1: वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था
0: अच्छा,
1: उनका,
0: आशा जी की बात निकली है तो वो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का
0: जी जी
1: गाना, जो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी
0: आहा,
1: आपने जीने ना
0: प्राण
1: दिया।
0: जाए पर वचन जाए,
1: हाँ, प्राण
0: वो
1: जाए,
0: नय्यर साहब का
1: नय्यर
0: कंपोजिशन,
1: साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी
0: हाँ,
1: होगी लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत
0: ये गाना सुन लिया जाए।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था
1: खुद का
0: जी,
1: बैनर था।
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया? जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे आपने?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा,
0: ओ
1: वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी जी
1: पुराना कोई फिल्म का,
0: हाँ
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी,
0: ओहो
1: तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार

0: पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा कभी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी।
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा,
0: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका।

0: बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो
1: ओहो
0: उसकी नहीं, वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से
1: जी जी
0: कोई
1: जी
0: कोई गाने इतने गुजराती में, गुजरात में गुजराती, फिर
1: हाँ
0: कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी,
1: हाँ ओह
0: फिर मलयालम, ऐसे
1: अच्छा
0: एक ही थोड़ा
1: अच्छा
0: थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे
1: अच्छा
0: उनकी भाषा में, अगर थोड़ा सा भी गाया ना
1: हाँ
0: तो मस्त उनको मज़ा
1: क्या
0: आता था
1: बात है,
0: सुनने में।
1: क्या बात है।
0: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं
1: हाँ
0: आपको
1: हाँ
0: बताया कि नहीं,
1: बिल्कुल
0: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे
1: हाँ
0: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका
1: स्क्रीन
0: फोल्डिंग
1: पर,
0: स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा कटआउट
0: बहुत
1: बनाया
0: बड़ा
1: था।
0: कटआउट बनाया था,
1: हाँ हाँ
0: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
1: जी जी जी
0: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादे, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो
1: जी
0: मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं
1: जी जी
0: कि वो आपका बाबा आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था,
1: हाँ
0: इंदौर
1: हाँ
0: के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है
1: हाँ
0: मंदसौर करके, तो हमारा शो ख़त्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे, तो
1: अच्छा
0: ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
1: घूम
0: है,
1: रहा है,
0: ऐसा
1: अच्छा
0: लगता
1: अच्छा
0: था,
1: अच्छा
0: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
1: हाँ
0: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो
1: अच्छा
0: सिर्फ
1: ओ
0: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था
1: हाँ
0: कि उसको
1: बिल्कुल
0: रिकॉर्ड जैसा लगा
1: क्या बात क्या
0: लेकिन
1: बात
0: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया,
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: उसको
1: जी
0: बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा
1: हाँ
0: गाना गा, फिर वो शांत हो गया
1: क्या बात
0: आदमी
1: क्या बात। श्रोताओं की बात निकली है
0: जी
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में
0: हाँ
1: शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं,
0: जी
1: हर शहर का श्रोता अलग होता
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
1: हाँ
0: अनुभव से
1: हाँ
0: आपको मालूम होना चाहिए
1: हाँ
0: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
1: जी जी
0: एक साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके शाम के सामने ये करते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: फिर दो गाने के बाद ये गाना कोटा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा
1: अच्छा
0: के नहीं आती बात।
1: अच्छा अच्छा
0: और जहाँ तक हम पहली बार भी गए
1: हाँ
0: किसी शहर में किसी
1: हाँ
0: गांव में छोटे से गांव में भी,
1: जी जी
0: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस
1: ओहो
0: प्रकार के गाने चाहिए,
1: अच्छा
0: तो वो होने से ज़्यादा अच्छा होता
1: हाँ।
0: है
1: और
0: समझ।
1: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फ़र्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, ये
1: अच्छा
0: है अच्छा
1: हाँ हाँ
0: लगता,
1: हाँ
0: क्योंकि ये रफ़ी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं
1: हाँ हाँ
0: तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
1: पसंद आता
0: पहला प्रमिला
1: जी
0: भी
1: जी
0: अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
1: जी
0: पूछते
1: जी
0: थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: और रफ़ी साहब का गाना एक डुगाना है,
1: हाँ हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
1: ओहो
0: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो आगे आके उनको उसको एक मतलब ना मैं बताती हूँ आपको,
1: हाँ हाँ
0: रफ़ी साहब पहले शुरू करते
1: जी
0: थे,

0: गया फिर जानी विस्की और परसों भी रहेगा और तरसों भी। मैं क्या जॉनी भाई आप इतना के पुना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: विमला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा,
1: ना, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है
1: बहुत फ़र्क है,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: फ़र्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है,
0: जी जी
1: फिर
0: जी
1: भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी,
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश
0: जी
1: थी।
0: जी जी अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कि ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी।
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छी
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: दूसरा कोई कहने की
0: हाँ
1: ज़रूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल,
1: है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता
1: प्रेजेंटेशन
0: हो
1: शालीनता हो
0: तो
1: ज़रूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
1: बिल्कुल।
0: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: ज़्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
0: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज़ भी
0: जी, कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी।
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रियल, आप मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी।
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी।
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
0: जी
1: किया
0: जी जी
1: मुझे।
0: प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के
1: हाँ
0: बताया, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया।
1: समझ,
0: सबका गाने में अलग, उनका अपना ढंग होता है और
1: सही
0: उनकी
1: बात सही बात।
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
1: हाँ जी
0: शमशाद
1: हाँ जी
0: बेगम जी के
1: हाँ
0: प्रस्तुत,
1: जी हाँ
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: यूँ
0: किन
1: कहूँगी
0: कंपोजिशंस में
1: कि
0: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि
0: जी जी
1: पुराने ज़माने के जो कंपोजिशंस थे
0: जी
1: वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा
1: हाँ अभी
0: अच्छा
1: आज का ज़माने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के ज़माने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पुराने जो गाने थे
0: हाँ
1: उसमें अगर जो म्यूज़िक भी था
0: हाँ
1: बीच का,
0: जी
1: वो म्यूज़िक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूज़िक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है
0: हाँ समझ
1: ए,
0: में आता
1: ऐसा चिल्लाते थे
0: है
1: जरा
0: जी
1: भी।
0: जी
1: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक हैं,
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
0: अच्छा
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफ़ी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाना,
0: जी जी
1: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा
1: हाँ तो नंदुरबार करके गांव है छोटा
0: जी
1: सा धुलिया के पास,
0: जी
1: तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
0: हाँ
1: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
0: हाँ
1: क्लासिकल का ज्ञान
0: हाँ
1: था,
0: हाँ
1: तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
0: ओ
1: तो रफ़ी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो
0: जी
1: तो, लेकिन रफ़ी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
0: हाँ
1: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
0: जी
1: मुकरी,
0: जी
1: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा।
0: बिल्कुल,
1: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए,
0: तो श्रोताओं
1: वे
0: के समझ में आ
1: पुराने जो
0: जाता है
1: गाने
0: जी जी
1: बराबर उनको ए
0: बिल्कुल
1: करके चिल्ला देते वहां से।
0: हाँ। क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
1: हाँ
0: सुना
1: वो
0: है, तो
1: उनके
0: उन्हें
1: दिमाग
0: वैसा का
1: में
0: वैसा वो सुनना
1: वैसा के
0: चाहते
1: वैसा।
0: हैं।
1: अभी
0: जी
1: वे गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा
0: हाँ
1: टरा, वो
0: हाँ
1: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना
0: जी
1: म्यूजिक
0: जी जी
1: चिपक
0: जी
1: के चलता था
0: जी
1: शब्दों
0: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
1: जी।
0: उनकी नज़र से एक
1: हाँ
0: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
1: मिलता
0: में,
1: नहीं है, सही बात,
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
1: बजा
0: अपना
1: करते।
0: उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल,
0: हाँ
1: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से।
0: जी
1: इसका मैं, अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ
0: जी
1: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
0: जी
1: नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया,
0: हाँ
1: उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
0: सिंह
1: होता,
0: हाँ
1: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
0: बिल्कुल
1: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था
0: हाँ
1: सालों साल तक।
0: जी
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
0: हाँ
1: बहुत सारे लोगों ने मुझे तो क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से,
0: हाँ
1: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो
0: जी
1: जाएगा
0: जी
1: नाजी जायजे। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का,
0: जी
1: उसमें एक रिहर्सल
0: हाँ
1: और शो
0: जी
1: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
0: ओ
1: हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात।
0: क्या बात
1: जो तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे
0: हाँ
1: म्यूजिशियंस,
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: संजय मराठे करके है,
0: जी
1: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
0: जी
1: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है, तो
0: अच्छा
1: ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन
0: हाँ
1: कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए

0: तो जरूरत होती थी ना
1: बिल्कुल
0: रिहर्सल,
1: बिल्कुल
0: तो एक रिहर्सल और शो,
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको,
1: जी
0: शो
1: जी
0: को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके,
1: विनय मानके।
0: विनय मानके।
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत
0: और
1: से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज़ हम सुनते हैं,
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ, बहुत सारे
1: जी
0: जिंगल्स
1: जी
0: गाए
1: जी
0: उसने। और
1: अच्छा
0: स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
1: हाँ
0: परफॉर्म होता है,
1: जी
0: वो था। बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: मतलब ऐसे
1: हाँ हाँ
0: किसी को
1: हाँ
0: तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे,
1: जी
0: नॉट डैट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
1: अच्छा
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एकदाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा गया।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: सिंगर थे
0: एक गाना था अन्ना
1: जी।
0: जी का,
1: हाँ हाँ
0: भोली सूरत दिल के खोटे,
1: हाँ
0: नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये
1: हाँ
0: बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा
1: अच्छा
0: खोटी वाली, कुछ भी मतलब
1: अच्छा
0: वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता
1: मस्ती के
0: था,
1: मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड में।
1: रहते थे वो।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम कर रहे हैं हेडलाइंस के साथ। इसके बाद आप सुनेंगे

0: युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: तो नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी, भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। और IPL में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

दोस्तों, आजकल ड्रोन सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत जरूरी हो गए हैं। ड्रोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम निवेश में अच्छी कमाई और तेज तरक्की संभव है। कैसे, जानते हैं हमारी आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल अब कई क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि में किसान ड्रोन से दवा का छिड़काव करते हैं जिससे समय और पैसे दोनों बचते हैं। डिलीवरी कंपनियां भविष्य में ड्रोन से सामान पहुंचाने की योजना बना रही हैं। आपदा प्रबंधन में बाढ़ या भूकंप के समय ड्रोन से बचाव कार्य किया जाता है। इसके अलावा फिल्म निर्माण, रक्षा, निगरानी, मैपिंग और सोलर प्लांट जांच जैसे कामों में ड्रोन का बड़ा रोल है। तो इसमें क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, इसमें है ड्रोन पायलट, ड्रोन ट्रेनर, ड्रोन टेक्नीशियन और रिपेयरिंग, डेटा एनालिस्ट जो कि ड्रोन से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ड्रोन सर्विस कंपनी शुरू करने वाले उद्यमी। दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रोन नियम 2021 बनाकर इस क्षेत्र को आसान बना दिया है। अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति DGCA से लाइसेंस लेकर ड्रोन उड़ा सकता है। कई ITI, पॉलिटेक्निक और प्राइवेट संस्थान सस्ते कोर्स चला रहे हैं। इसमें 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमाई की बात करें तो शुरुआत में 20,000 से 40,000 रुपए महीना आसानी से मिल सकता है। अनुभव के साथ 1,00,000 रुपए तक सैलरी या प्रति प्रोजेक्ट अच्छी कमाई संभव है। गांव कस्बों में भी कृषि ड्रोन सर्विस देकर आप अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं। तो इसमें तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों, 2025 से 2030 के बीच ड्रोन इंडस्ट्री भारत में हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली है। इसलिए अगर आपको टेक्नोलॉजी, उड़ान और नई चीजें सीखना पसंद है तो ड्रोन क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आज पढ़ाई के साथ साथ ड्रोन कोर्स करके आप खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मेहनत और सही ट्रेनिंग के साथ ये क्षेत्र न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि आत्मनिर्भर

भर भारत का हिस्सा भी बनाएगा। तो अब आप भी अपने ख्वाबों की उड़ान भरिए एलिसा मेंडोसा और मोहित चौहान के गाए हुए इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलित जीवन शैली मतलब बैलेंस्ड लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो गई है। संतुलित जीवन का मतलब है काम, आराम, स्वास्थ्य, परिवार और खुशी के बीच सही तालमेल बैठाना। जब हम इन सब को संतुलित मतलब बैलेंस्ड रखते हैं, तब हम स्वस्थ, खुश और सफल रहते हैं। तो अगर आप भी हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले है आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। तो रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग हो, योगा हो या फिर जिम। साथ में अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं, ज्यादा जंक फूड से बचें। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आपने सुना होगा, तन चंगा तो मन चंगा। इसके बाद आती है आपकी मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य।

0: कार्यक्रम हमारा पूरा परिवार सुनता है। 90 साल में आकाशवाणी ने बहुत कुछ देखा है, ट्रांजिस्टर से लेकर अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक। लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है विश्वसनीयता और भारतीयपन। आज भी दूर दराज के गांवों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां रेडियो आज भी राज करता है। 90 साल मुबारक हो आकाशवाणी। उम्मीद है अगले 90 साल भी आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आज इस तरह से आपसे बातें करके आपका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप शिवांजलि तिवारी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने आकाशवाणी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोड़ते चित्रकला के बारे में। दोस्तों, मोड़ते चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार बिना जीवित चीजों के चित्र बनाता है। इसमें फूल, फल, किताबें, बर्तन, बोतल, खिलौने या घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सजाकर उनका चित्र बनाया जाता है। इसे इंग्लिश में स्टिल लाइफ पेंटिंग कहा जाता है। ये चित्रकला मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के आकार, रंग, प्रकाश और उनके छाया को सुंदर तरीके से दिखाना होता है। मोड़ते चित्रकला सीखने से बच्चों और कलाकारों की देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जब कोई कलाकार किसी वस्तु को ध्यान से देखता है, तब उसे उसकी बनावट, रंग और आकार का सही ज्ञान हो पाता है। यही कारण है कि ये चित्रकला कला सीखने की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस कला में सबसे इम्पोर्टेंट बात है संतुलन और सजावट। कलाकार पहले वस्तुओं को अच्छे से सजाता है, फिर पेंसिल से हल्की रूपरेखा बनाता है, उसके बाद रंगों का उपयोग करके चित्र को आकर्षक बनाया जाता है। प्रकाश और छाया का सही उपयोग चित्र को जीवंत बना देता है। दोस्तों, मोड़ते चित्रकला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये धैर्य और एकाग्रता भी सिखाती है। इस कला को बनाने में समय और ध्यान दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मन को शांत करने में भी ये मदद करती है। आज के समय में स्कूलों, आर्ट कंपटीशन और प्रदर्शनियों में मोड़ते चित्रकला का विशेष महत्व है। कई कलाकार इस कला के माध्यम से अपनी कल्पना और रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाते हैं। कहा जा सकता है कि मोड़ते चित्रकला एक सरल, सुंदर और उपयोगी कला है। ये हमें साधारण वस्तुओं में भी सुंदरता देखने की प्रेरणा देती है और हमारी कला प्रतिभा को निखारती है। ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

शान और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था स्वानंद किरकिरे ने, संगीतबद्ध किया था शांतनु मोइत्रा ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। शराबी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों का गाया। शराबी फिल्म के सितारे थे अमिताभ बच्चन और जया प्रदा। इसमें प्राण ने भी एक विशेष किरदार निभाया था, इसमें मुकरी भी थे। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीतबद्ध किया पप्पी लहरी ने।

आशा भोसले और अनवर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म सोहनी महिवाल का गीत। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा फिल्म पुकार का गीत लता मंगेशकर की आवाज़।

पुकार फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में बता दें, रात 9:30 बजे सुनिए अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। स्पॉटलाइट, ये कार्यक्रम आप सुनिएगा 9:15 पर। ये कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:00 बजे सुर्खियों में कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत 7:21 पर। आज सुनिए लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गम्मत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिए मनीषा जैन के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में दीप्ति मिश्रा होंगे कलाकार। समय होगा शाम 6:45। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए रात 8:15 से।

आपको एक बार फिर बता दें, रात 9:30 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

रेडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुँच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora.
1: Netherlands ke samaj aur yahan ki economy mein jo contribute kar rahe hain us par har bharatvasi ko garv hai. Main aaj is avsar par Netherlands ki janta ka yahan ki sarkar ka aabhar vyakt karta hu. Main yahan ki janta ko 140 crore bharatvasiyon ki taraf se अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
2: Last night, when the Prime Minister reached the Netherlands, he was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The Economic Offences Wing EOW of Delhi Police has busted a goods and services tax GST fraud cartel, arresting six persons. Additional Commissioner in EOW Ravi Kumar Singh said in a press conference that the accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He informed that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The additional commissioner noted that during the investigation, around 51 lakh rupees cash, 15 mobile phones, 2 cars, fake invoices and SIM cards were reported. The West Bengal government has moved to withdraw the state's ongoing case in the Supreme Court regarding OBC reservation. On Thursday, government lawyer Kunal Memani wrote to the Supreme Court registrar requesting an urgent hearing to formally withdraw the matter. On the 22nd of May 2024, the Calcutta High Court struck down the OBC list prepared by the TMC government and ordered a fresh list to be created. The then state government appealed against that verdict in the Supreme Court, where the case is currently being heard by a bench headed by the Chief Justice of India. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET UG 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandhare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. The CBI said she was involved in the NEET UG 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said the accused had complete access to the botany and zoology question papers. So far, 9 accused have been arrested in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune and Ahilyanagar. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देशभक्ति फिल्मी गाने। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में फिल्म उपकार का ये गीत आप तक।

देशप्रेमी फिल्म के इस गीत के साथ ही देशभक्ति फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नूर इज्जुद्दीन इत्यमुं च पराजित्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुषयुगलम् अन्तिमस्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय कोलकाता नाइट राइडर्स इतीदं दलं ईडन गार्डन्स इत्यत्र गुजरात टाइटन्स इत्यनेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं मनीषा जैन।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मनीषा जैन के गाए लोकगीत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम एक बार फिर बता दें, रात 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट, 9:30 पर सुनिएगा अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दीप्ति मिश्रा के गाए गीत और भजन।

0: आप सुन रहे थे अभी दीप्ति मिश्रा के गाए गीत और भजन। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुँच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं

0: लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis.
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: Highlighting global efforts to strengthen economic resilience, the Prime Minister said, India and the Netherlands are jointly focusing on building robust supply chains. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Economic Offences Wing, EOW, of Delhi Police has busted a Goods and Services Tax, GST, fraud cartel and has arrested 6 people. Addressing the press conference, Additional Commissioner in EOW, Ravi Kumar Singh, said that the accused were operating fake firms. He informed that accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He said that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET undergraduate 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. CBI said that she was involved in the NEET undergraduate 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said that the accused had complete access to the botany and zoology question papers. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number of out-of-school children in the country, especially in the 14 to 18 year age group. A high-level meeting chaired by School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar discussed the issue and reviewed the implementation strategy for a proposed new initiative by the National Institute of Open Schooling. During the meeting, Mr. Kumar said that according to available data, out of every 100 children entering class 1, only 62 reach class 12. He noted that more than 2 crore children in the 14 to 18 years age group

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
0: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ये पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी

0: खड़ी होती है। फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए, क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
1: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
3: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, इस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है, जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है।
4: सीसीटीवी कैमरे
3: देखिए, जैसे कि CCTV सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगरमालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघट्टा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघट्टा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकास खंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया।

मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे बारे सभी किसान भज्जा और बिन्ना हरंस हैं। लखन भज्जा की दो हाथ जोड़ हैं, राम राम। किसान भैया हर ये टाइम पे गर्मी अगर कहें अपन तो पूरी जवानी को जोर दिखा रही है और सूरज नारायण भूमध्य रेखा पे सीधे चमक रहे हैं और ऐसे में अपन को बहुत सावधान रहने को काम है। बीच बीच में जे बादर पानी पीछो नहीं छोड़ रहे आए अपनों जोर ताप जुदे परेशान करे हैं। घर परिवार के सदस्यन के अलावा पशुअन पे सोई अपन को ऐसे मौसम में ध्यान देवे को काम है। उनको चारों पानी टैम टैम से देते रहो चाहिए और आसो दो जेठ सोई है भैया, सो किसानी पे सोई ध्यान देवे को काम है। भैया रो जैसे कि आपसे बताएं आज ही सवेरे सवेरे कोहरे दोपहर बिल्कुल बिल्कुल कोहरे दोपहर की बात है कि बट्टू कक्का अपनी पेलों से लंबी लंबी डगें धरत चले जा रहे हते। उनने सोची हुई है कि लखन भैया ने हमें देखा ही न पा हुई है, मनो हमने देख लो। सो हमने कही काय कक्का कहाँ निकरे जा रहे हो मस्काई, मुंह में गमछा और पावर वारो चचमा लगा के। सो बट्टू कक्का ही करन लगे और बोले भैया मुकद्दम के घर आए सभी जने बैठ रहे हैं, गांव के पंच सरपंच सभी जनन के लाने मुनादी तो दिबाई है, कतो में नहीं जा रहे आओ पता नहीं है तुम्हें। हमने कही कक्का हम आओ काम हुई है तो हम सोई आज अभी, मनो जा तो बताओ के काय के लाने आए सब जने जुड़ रहे हैं। सो कक्का कहने लगे के भज्जा तुम तो जानत हो कि गांव के सभी किसान जब खेती किसानी को काम पूरो करके सुत्ते हो जाते हैं तो सबरे हल के बड्डे एक होके खेर माई के ते भंडारो करत हैं। हमने कही हाओ इसे सभी में एकता की भावना जागृत होते है और सभी के सुख दुख में कामे आउत हैं। हमने कही ऐसो तो अपने गांव में सैकड़ों साल से वो चलो आ रो कक्का, हमें ऐसो सुनवे में मिलो और हमसे तनक तनक जाना थे, हमसे ज़्यादा तो और तुम जाना तू हो। तो कक्का कहने लगे जा बात तो बिल्कुल साँची है और तुम और तो अवे का अवे की लड़का आओ, ऐसी एकता तो अपने इतने जुगन जुगन से चली आ रही है। हमने कही कक्का जा रीत तो अपने इतने हमेशा ही बनी रहे और जा समझो कि कुओ नहीं मिटा सकत ए रीत खो काय के जब परंपरा की आए सियान अंश जो चलो आ रहा है कि छोटे बड्डे को भेदभाव नहीं, ऊंच नीच को भेदभाव नहीं, अमीर गरीब को भेदभाव नहीं, ऐसी एकता की भावना को हो वो बहुत जरूरी है। और जा अकेले अपने गांव में नहीं जा तो अपने पूरे देश की बातें आए, तो ऐसी कछु बातें भई। और फिर भैया बीच बीच में हम आपको और बते हैं कि हम आयुर बट्टू कक्का की का बतकाओ भय सो बे बते हैं। और जैसे कि आज तो बराबर साथ है और अब दो जेठ हैं तो भज्जे अब कछु कछु बीच में तो जो परसोत्तम महीना कहे है मनो अब आज जैसे बराबर साथ अमास है तो जे गम्मत बारे हने बैठे हैं भज्जा हने के सब जनों ने आज ऐसी सूद बांधी है के कछु दिन आप ब्याह बरात हैं तनक रुक जे हैं। तो कहने लगे हम तो सब जने ब्याह बरातों के गाएँ। हमने कहे भैया बिल्कुल खूब सबको स्वागत है गावे वारों को ने सुनवे वारों को। तो अपनी इतनी बात कहो फिर इनको जो माइक दौजे है के कहने लगी कुंजावती भैया ने तो लियो और भाने जन के ब्याह को पूरो जिम्मो लियो, पूरो जिम्मो लियो नहीं है कोई हमारा, हे लाला हरदौल तुम्हें हो एक सहारा। कहत लखन कबीर आए बनाई बिगड़ी तुमने, हरसी सकल समाज लगी है जय जय कहने।

0: बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हाँ तो किसान भैया, अब आप समझ गए हुई हो कि लखन भज्जा का क्या बारे हैं। अब हम जाए क्या बारे हैं कि जोन अटका के अपने आज 15 दिन पूरे हो गए हैं। वो अपनो अटका है जिसको जवाब शामिल होने हैं, वो है 2 मई 2026 की गम्मत में बूझो गो अटका। और अटका के बोल हते कि केला जैसो फल है, उर्दा जैसो बीज, सफ़ेद सफ़ेद हवा में उड़े है कौन सी चीज। तो भैया देखो, जब जो सेम राजा फरत है तो फरत में देखो फल ऐसो लगो दिखात है केला घाई। अब जब वो फूरो पकवे के बाद तो बीज करिया निकला थे उर्दा घाई, और जो वो के रुगा हैं जब ये दिनों चटका थे अच्छी तेज दोपहरिया में पक हैं, तो भी रुगा यहाँ से सबरे पूरे गांव भरे में उड़ा थे अपन वरों के नहीं भला। तो एक को जवाब है सेमरा को फल, सेमरा माने सेमल। तो जो तो है तो अपनो जवाब केला के लाने, एक सेमरा के लाने, केला जैसो फल है सो। और हमें जब चिट्ठिया मिली भैया, और जा चिट्ठिया अपने बिल्कुल नियमित रूप से सुनाते हैं सुमत कुमार जैन साहब जी लिख रहे हैं कि आदरणीय लखन भैया, मधुवंती बिन्ना और गम्मत की सबरी टीम के लाने ग्राम पिंडई जिला मंडला से सुमत कुमार जैन जे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, इनकी तरफ से राम राम हर हर नरमदे की स्वीकार होए। सो भैया बिल्कुल आपकी स्वीकार भाई, नरमदे हर और जयराम जी की। कार्यक्रम कृषि जगत में गम्मत बड़ा लोकप्रिय है, अटका से ज्ञान प्राप्त होता है, गम्मत से भरपूर मनोरंजन भी होता है। अटका एक भेज रहा हूँ, कृपा कर शामिल करने की कृपा करें। तो भैया बिल्कुल शामिल कर भी कृपा नहीं, जब चिट्ठी बिल्कुल ऐसी ढेर में से मिली हमें, सो हमने एक पहले नंबर पर धर ली। अब ये मैं अटका इनकी तरफ से लिखे आओ है, तो आज की गम्मत को जो ही अटका है अपनों कहानो भैया सवाल के तौर पर, माने के आपई के बीच के सुनवे वारे श्रोता और आपई से बूझ रहे, माने सभी सुनवे वारों से। तो आपन खें 15 दिन में अटका को जवाब लिखो पहुँचाऊँ ने, जैसे हम बेर बेर बोलत रहे थे। इनने लिखो है कि भैया भरे एक बार, भाभी भरे बार बार। ठीक है भैया, तो जो अपनो अटका कहानो सुमत कुमार जैन की तरफ से भेजो भाव अटका है कि भैया भरे एक बार और भाभी भरे बार बार, माने दूसरे शब्दों में अपन कह देवें कि कोई को भी जो भी रिश्तो नातो लगत है तो उनके ऊपर जो लागू होते हैं। और जो अपनो आजई को अटका है चिट्ठी लिखवे के लाने अपन इन श्रोता भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मनो ये में जो जवाब लिखे हुए, अब आप जाने के लगे कि जवाब सही बता दो लखन भज्जा तो गड़बड़ हो जाए, इसे हम जवाब नहीं बताएं, जवाब आप औरों के चिट्ठियों में लिखो पहुँचाने पर है, जवाब सहित इन्हें अपनो अटका लिखो पहुँचाओ है। तो चिट्ठी लिखवे के लाने और अटका हमारे तेलो लिखें पहुँचावे के लाने अपन इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर तन कहीं हम चर्चा को आगे बढ़ाएं भैया के बट्टू कक्का से जुन बतो, हमने कही बट्टू कक्का आपसे तो हमें कछु न कछु ज्ञान ही मिला थे और बोलवे को मौका सोई मिला थे। सो जैसे कि सौहार्द सांप्रदायिक एकता जुन कहा थे जाई तो आई जुन अपने गाँव में झलक रही है, तो जहाँ अपने देश में समाजन में विभिन्न धर्म हैं, जातियाँ हैं, संप्रदाय हैं, और सभी के बीच में प्रेम आपसी भाईचारा शांति और आपसी मेलजोल की जहाँ स्थिति आज अपन देख रहे, जहाँ सभी जनों में भाव चाहिए ऐसो अपन एक होके रहें। हमने कही कक्का जय एक ऐसी सामाजिक अवस्था है जहाँ सभी भैया बिन्ना हने और बिना कोनो भेदभाव के एक दूसरे की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को सम्मान कराते हैं, मिलजुल के रहते हैं, और यही सब चीज़ें एक देश की प्रगति और एकता के लाने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ये सोबत का हम आओ होत गाओ। फिर हमने कि कक्का हम बीच बीच में लोकगीत सोई सुनवाऊ, ये भी गम्मत है सजाऊ ने हमें। तो कहने लगे भज्जा ठीक है तुम आए वो में हम कछू डिस्टर्ब सुरूंगा कर रहे, तुम अपने मन को कर चलो। तो भैया फिर अब जे बिन्ना हने बैठी हैं अपनो नंबर लगा के गावे के लाने, तो हम अपनी इतनी बात कहें फिर जो माइक इनके लाने के पनवारे परने लगे जेवन लगी बरात, छप्पन व्यंजन परस दए पसो में भर भर भात, पसो में भर भर भात मही गुर घूरा परसो, खटरस भोजन भये आनंद ऐसो वरसो, कहत लखन कबीराय सुपारी पान बटारे, देखी है गजब जीवनार परे ते जब पनवारे।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हाँ, तो किसान भैया रो, अपनो अटका सुमत कुमार जैन जी की तरफ से अपन खे मिलो है आज को अटका, और ऐसो है कि भैया भरे एक बार, भोजी भरे बार बार, बस जो ही है अपनो छोटो सो अटका है और छोटो ही सो जवाब है ना। तो आप और न तो लिख लो हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, बीच बीच में हम और बताओ चल हैं। अब जहाँ हमने एक चिट्ठी उठाई है भैया, लिखी गई है सिंहपुर बड़ा से, लिखवे बारे अपने नियमित श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता नेमा, भावना और प्राची नेमा जी की तरफ से लिखी गई है। जे लिखा थे सबसे पहले उनके जय जय भोलेनाथ की, तो आपकी जय जय भोलेनाथ की पाई। आंगन जी लिख रहे कि 11 अप्रैल की गम्मत बड़ी अच्छी लगी, और जुन 11 अप्रैल की गम्मत में अटका बूझो है तो कि बा गई जाय आ गई, एको जवाब इनने लिखो पहुँचाओ है नज़र। भैया बिल्कुल आपने सही सही लिखो पहुँचाओ है, चिट्ठी लिखवे के लाने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अबे हम आपको एक धन्यवाद और दे रहे हैं कि आपने अपनी चिट्ठी में जल बचाओ के लाने जुन जो संदेश भेजो है, और नल को आकार बना के, माने पूरे नल को चित्र बना के इनने भैया अपनी चिट्ठी में लिख को पहुँचाओ है। अपन ऐसी श्रोताओं के और एक बेरे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, चिट्ठी लिखवे के लाने धन्यवाद देते हैं। और जरूरी है भैया कि अपन जल को संरक्षण करें, जल को बचाएं। कैसे कई जने कहते हैं और अपन ने लिखो सो पढ़ो है कि जल ही जीवन है। अब गावे के लाने फिर इनको मौका दो जा रहा है, जो माइक दे दो जय है। इतनी बात कह कहूँ कि कन्या रतन अनमोल है, तोले न काहू तोल, दो कुल की जे लक्ष्मी, अब हिये तराजू तोल, हिये तराजू तोल, पिता माता की प्यारी, ससरे में बन बहु लक्ष्मी जेई प्यारी, कहत लखन कविराय, घर घर में होय जतन, इनसे ही चलत संसार, अनमोल है कन्या रतन।
3: आवे दुना के झुना के बेटी मंडपे डोले सो।

हाँ तो भैया रो जिन्हें अटकल लिखला है तो मिला लियो, नहीं लिख पाए हो तो लिख लियो। अपनो आज को अटका है, भैया भरे एक बार, भौजी भरे बार बार। बस इतना ही हल्को ही सो अटका है। और अब हमने जा एक चिट्ठी उठाई भैया, जा लिखी गई है अपने नियमित श्रोता हैं, मुकाम पोस्ट मिडली बाया बर्मान जिला नरसिंहपुर के श्रोता योगेंद्र सिंह यादव, बाल किशन, सोनू यादव, गौरव, संध्या, साधना, श्रीमती तुलजा यादव, शुभांशी, गौरी, महिमा, दीक्षा, रोशनी, हरी यादव और कमल किशोर यादव जी की तरफ से जा चिट्ठी लिखी गई। जे भैया लिखा था कि श्रीमान लखन भैया, मधुबंती बिन्ना, गुड्डन बिन्ना, सभी जनों के लाने इनने नरम देहर और जयराम जी की लिखों पहुंचाई है। तो भैया आपकी नरम देहर और जयराम जी की सब जनों के स्वीकार भाई। आगे जी लिखत हैं कि गम्मत ज्ञान को और मनोरंजन को खजानो है, हम लोग बड़े चाव से गम्मत सुनत हैं शनिचर के दिना। अगले अब जैसे एक पहले शनिचर में सुनत हैं तो दूसरे शनिचर को इंतजार रहे थे भैया। बिल्कुल वो तो है ही कि अब अगलो आज है तो फिर अगलो फिर आए आपकी हफ्ता में। तो ऐसी इनने बात लिख पहुंचाई है और गम्मत की इनने बड़ी प्रशंसा करी है। आंगे जी लिख रहे हैं कि जो 2 मई में अटका बुझोगा हुआ तो केला जैसो फल है, उड़दा जैसो बीज, सफ़ेद सफ़ेद हवा में उड़े है कौन सी चीज़। तो इनने लिखो है कि सेमरा को फल आए, सेमराई में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। चिट्ठी लिखवे के लाने, सही जवाब लिखवे के लाने अपन इन श्रोताओं के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब फिर अपनी इतनी बात कहें और जी बिन्ना हने अभी बिल्कुल भगी नहीं आए, सजी बैठी हैं बिना गाय तो जी हाई ने 8 बजे के पेलम। तो इतनी बात कहें कि पतियां लिख पहुंचाइयो, मत करियो तुम फोन, पतियां छतियां से लगें फोन पे जाने कौन, फोन पे जाने कौन, जे पतियां बाँचत रह भी और जब जब आवे याद तबई तब फोन लगे भी। कहत लखन कबीराय बाट हेरत हैं अखियां, आ जाइयो सजन हमार बाँच खें पावन पतियां।

हाँ तो किसान भैया रो, जिनने अटका लिख लो है तो मिला लो, नहीं लिख पाए तो लिख लो। अपनो आज को अटका है, भैया भरे एक बार और भौजी भरे बार बार। जो अपनो आज को अटका है और अटका चिट्ठी में लिखो पहुँचाओ है, सुमत कुमार जैन जी की तरफ से जो आओ है। और भैया आप और से सोई हमारा जो ही निवेदन है कि आप और सोई अपनी चिट्ठियों में अटका आपके ढंगाए ऐसे हैं जो हमारे तैसे बोले नहीं गए आए, तो आप और लिखें पहुँचाओ। अगली चिट्ठी हमने उठाई भैया, यह लिखी गई है, सर्व मंगल मांगल्य सुबे सर्वार्थ साधि के शरणीय त्र्यंब के गौरी नारायणी नमस्तुते श्री हरि शरणम ग्राम बिचुआ राजमार्ग से मोती यादव भाई पूरन लाल परशुराम विश्वकर्मा और इनके परिवार की तरफ से गम्मत की इन तारीफ करी है, अपने लाने नरम दे हर और जयराम जी की लिखों पहुंचाई है, बस गम्मत की प्रशंसा इन्हें लिखी भैया अपनी चिट्ठी में। तो अपने इनका इतने के लाने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और फिर इतनी बात कहें और इनके लाने जो माइक दौजे है कि कंकन छोरत राम जी खूब ही रहे शरमाए, कौन कौन गांठ लगाई है हरदी तेल लगाए, हरदी तेल लगाए गांठ खोल ही नहीं पाते, सखियां करत उपहास राम सिय मन मुस्काते, कहत लखन कविराय ब्याव के बंध गए बंधन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिया के छोरत कंकन।

हाँ तो किसान भैया हरो, आपके लाने बता दें कि अपनो आज को अटका भैया भरे एक बार, भौजी भरे बार बार, जो अपनो आज को अटका है। और जिन कलाकारों ने अपनी आज की गम्मत सजाई, उनमें नेपाल सिंह राजपूत और उनके संगी साथी, समूह स्वर में गा रही थी चित्रा देवी तिवारी, अनीता यादव और शोभा भट्ट, हरिराम भट्ट और उनके संगी साथी, अब्बई अब्बई गा रहे हैं राजा राम विश्वकर्मा और उनकी संगी साथी। चिठियां पहुंचावे के लाने हमारी तेको पता है, कृषि जगत कार्यक्रम गम्मत द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर कटंगा जबलपुर मध्य प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर है 14 और पिन कोड है 482001। और अब यही पता के संगे घड़ी कह रही है कि लखन भैया अपने सभी सुन व्यवहारों से अनुमति ले लो, तो सभी जनों से दो हाथ जोड़ के लखन भैया की राम राम और जय जवान जय किसान।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं। सुर्खियों में कार्यक्रम के लिए चलते हैं भोपाल केंद्र।

0: Surgiome.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
3: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
1: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण और इसके मायने क्या हैं?
2: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ये आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया, और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा है, 15 मई 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है। नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर की वो आज है, और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में, जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ, और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19-20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा, जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
1: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
2: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट

0: वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है चार देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है, वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा, बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है, सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन्स ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि स्टेबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 ट्रिलियन के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा, परंतु
1: जी
0: पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाइज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
1: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
0: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है। और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या
1: जी
0: फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में
1: बिल्कुल
0: जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नेदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है। और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ, तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं, ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को
1: जी
0: बहुत फायदा हो सकता है।
1: अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी। तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है, अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
0: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है। मैं रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें
1: जी
0: उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहाँ पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी, तो जो हमारा इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है
1: जी
0: उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। में देखिए, ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। इनके पास ये छोटे देश हो, उनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी जिसमें तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है।
0: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है जो कि उनके नॉर्थ सी से, वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था, तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को यह सप्लाई हुआ था। और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं। और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है। और भारत और इटली के बीच में, चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड हैं, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को और यूरोप और भारत के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी।
1: अशोक जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए,
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मोहब्बतें फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना उद्भव शेट्टी, जसपिंदर नरूला, उदित नारायण, प्रथा मजूमदार का गाया। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। मोहित चौहान की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं अनु मलिक का संगीतबद्ध गया गीत। फिल्म है ये जो मोहब्बत है।

विजयपथ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कुमार शानू के साथ अलका याग्निक की थी आवाज़, और अब कलंक फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

कलंक फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत

0: में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन

परीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।

0: है पहेली।
1: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
2: तारंगा तेरी याद में।
1: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक

0: तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: क्योंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्क।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक

क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था।

0: और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाई का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सह

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: और माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैफाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने

0: हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।

0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
1: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल

0: इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है। और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान, ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one Gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various Gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और

0: नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य

0: मिल रहा है, ये देखो।
1: आप
0: अच्छा, टाइम तो बता दीजिए, 5:16
1: सोलह
0: मिनट
1: मिनट
0: 27:28। ठीक,
1: अंठाव
0: हाँ
1: ठीक है
0: ठीक है, ओके। हाँ
1: नहीं खोला लेते ना थोड़ा।
0: हाँ उसको, हेलो हेलो हेलो,
1: हाँ
0: मिल गया।
1: आ रही आवाज आ रही आवाज आ रही है। ओके